तो मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव और इस एपिसोड में कुछ ऐसे गाने आप तक पहुँचेंगे जो ऐसे बादल हैं, सिर्फ गरजते नहीं साथ बरसते भी हैं। पहला गाना जरा ब्लैक एंड वाइट है और इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले राज कपूर साहब ने नरगिस जी के साथ मिलकर रिहर्सल की, डांस करके दिखाया था मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी को कि भाई इस तरह का रोमांस है, ये आना चाहिए गाने में, नहीं आया तो फिर बात नहीं बनेगी। और उस डांस रिहर्सल के बाद राज साहब और नरगिस जी को उस रोमांस में देखने के बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। गाना कौन सा है साहब, आप समझ गए, श्री 420 का ये गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने और उसके बाद एक बेहतरीन किस्सा आपको सुनाऊंगा कि बरसात वाला ये गाना था, हीरो तो खूब नाचा पर हीरोइन फूट फूट के रो। कौन सा था वो गाना, कौन था ये हीरो?

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप उस पर बरसाती गाने सुन रहे हैं और इन गानों के जो जज्बात हैं उनमें हम भीग रहे हैं। मामला बड़ा रोमांटिक भी है। अभी जरा ले चलता हूँ आपको उस दौर में जहाँ पर बरसात वाला ही गाना शूट किया जा रहा था। हीरो तो खूब नाचा, खूब खुश हुआ, पर हीरोइन फूट फूट के रोई। बात दरअसल यूं रही कि ये वो हीरोइन रही जिन्होंने शुरुआत की थी 8 सिनेमा से, और मन करता था कि हमेशा सीरियस तरीके का ही सिनेमा किया जाए। लेकिन जब कमर्शियल सिनेमा में आई और ये बारिश वाला गाना इनके सामने रखा गया तो पहले तो इन्होंने ज़रा ना नुकुर की, पर हीरो ने समझा लिया कि नहीं नहीं करो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हीरो भी बहुत बड़ा, इसे ना करना बड़ा कठिन था, तो उस हीरो के साथ इस गाने की शूटिंग तो करी। शूटिंग के बाद ये रोने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों इस तरह का कमर्शियल सिनेमा कर रही हूँ, क्यों बारिश में भीगती भी नज़र आ रही हूँ। फिर हीरो इनके पास गया और कहने लगा कि ये एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, ये हीरो और हीरोइन रोमांस कर रहे हैं और इसमें कोई भी मूव ऐसी नहीं है जिससे लगे कि मामला बदसलूकी का है या वल्गर है। तब जाके हीरोइन की जान में जान आई, और जब इस गाने को पब्लिक ने देखा तो सभी ने सराहा और कहा कमाल का काम किया। हीरो अमिताभ बच्चन, हीरोइन स्मिता पाटिल। गाना सुन लीजिए आप, समझ जाएंगे। फिल्म का नाम बता दूं आपको, फिल्म का नाम है नमक हलाल। इस गाने को हम सुनेंगे और फिर बताऊंगा कि कैसे मनमोहन देसाई साहब ने राज कपूर को चैलेंज कर दिया था और फिर वो गाना बनाया कि राज कपूर भीगे भीगे भागते रहे नाचते रहे। बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी आज रबड़ जाए।

0: संदेह हुआ यूं कि मनमोहन देसाई साहब ने राज कपूर को चैलेंज कर दिया। ऐसी बात कह दी जिसके बाद राज साहब जो हैं वो बारिश में भीगते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। क्या मामला है जरा बयां करता हूँ। देखिए हुआ यूं कि मनमोहन देसाई साहब के बड़े भाई ने इनसे कहा कि भाई तुम भी कोई फिल्म में बनाओ, क्या कर रहे हो, कब तक बतौर असिस्टेंट काम करते रहोगे। मनमोहन देसाई साहब ने कह दिया कि भाई साहब आप राज कपूर और नूतन इन दोनों को ले आओ, इन दोनों के साथ ही फिल्म बनाओ।
1: अच्छा चलो बात करके आते हैं।
0: भाई साहब और मनमोहन देसाई पहुंचे, राज साहब से बात की। राज कपूर साहब ने कहा कि देखो फिल्म में काम करने में बुराई नहीं है, पर तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, इसने काम ही क्या किया, 20-22 साल इसकी उम्र है, ये क्या फिल्म बनाए। तो देसाई बंधुओं ने कहा कि राज साहब जब आपने पहली फिल्म बनाई थी तब आपकी क्या उम्र थी। तो राज कपूर सुनकर हैरान रह गए, हाँ मैं भी 20-22 साल का ही था, मैं मतलब कहते जब आप बना सकते हैं तो एक नौजवान की मदद नहीं करेंगे, आप एक गाना तो शूट करके देखिए, इस गाने में अगर आपको मजा ना आए तो फिर आप फिल्म से बाहर चले जाइएगा, मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा। राज कपूर तैयार हुए, गाना शूट किया गया और फिर ऐसा डम डम डिगा डिगा हुआ कि राज कपूर साहब ने कहा कि नहीं फिल्म में तो काम करूंगा। और उसके बाद मनमोहन देसाई ने भी पलट के नहीं देखा, अपने काम से ही राज कपूर का दिल जीत लिया। फिल्म का नाम छलिया। ये बात तो आप समझ गए ना। सुनते हैं राज साहब की इस मस्ती को, कल्याण जी आनंद जी की ये धुन है, मनमोहन देसाई साहब की पहली पिक्चर का ये गाना कमाल का है, सुनेंगे थोड़ा सा भीगेंगे जज्बातों में।

सब गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बेहतरीन गाने और कुछ बड़े ही अनसुने किस्से आपके साथ बांट रहा हूं। देखिए क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। अब अमृता सिंह, जबरदस्त अभिनेत्री अमृता सिंह, लेजेंडरी दिलीप कुमार के रिश्ते में आती, ये बात बड़ी अजब सी लगती है ना। देखिए क्या हुआ, अमृता सिंह जी की जो नानी रही जरीना, वो गुजरे वक्त की जबरदस्त अभिनेत्री बेगम पारा की बहन रही। बेगम पारा कौन हुई, ये इन्होंने शादी की नासिर खान से, नासिर खान दिलीप कुमार के छोटे भाई, और ये बेगम पारा से जुड़ी जाके अमृता सिंह जी, और इस तरह से इनडायरेक्टली ही सही ये दिलीप कुमार साहब के रिश्ते में आ गए। और इनके कज़न हैं कौन, अयूब खान। अयूब खान जिन्होंने फिल्मों में भी नाम कमाया और टेलीविज़न पे भी बड़ा नाम कमाया। अब बताओ फिल्म इंडस्ट्री में कौन किससे दूर रहा है, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कोने में सब रिश्तेदारी के बंधनों में बंध ही जाते हैं। ये बड़ी अनोखी सी बात, बड़ी ढूंढ के निकाली है, अभी आप तक पहुंचाई है। और अभी अमृता सिंह का जिक्र हुआ है तो एक गाना मैं सुनाता हूँ जिनकी पहली पिक्चर से है और कमाल का है, बादल गरज रहा है। अब देखते हैं कितना डर लगता है इसमें, सुनते हैं इस गाने को और फिर बताऊंगा कि कैसे एक हंसती गुनगुनाती लड़की रोने भी लगी और उसे जीवन साथी भी उन आंसुओं और उस हंसी के बीच मिल गया। लेकिन अभी बेताब से ये गाना।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बेहतरीन किस्से, कुछ जबरदस्त गाने आप तक पहुंचा रहा हूं। और अभी जरा ले चलता हूं आपको उस वक्त में जहां पर एक बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री जो बिना किसी बात के भी हंस सकती थी, बड़े से बड़ा एक्टर उसके सामने आ जाए और ये हंसने लगती थी, और शूटिंग के बीच में हंसती थी, सब परेशान होते थे और लगता था कि इसे साथी मिलेगा तो कैसा मिलेगा, पर हाँ इसकी जिंदगी में प्यार आया। एक बड़ा ही चुलबुला लड़का जो बड़ा अच्छा गाता भी था और अभिनेता भी था। अब इन दोनों ने शादी का फैसला किया, पर ये लड़की बहुत बीमार रहती थी और इसके वालिद ने कहा कि भाई पहले ज़रा लंडन

ले जाया जाए इसे, इसका इलाज कराया जाए, उसके बाद तुम दोनों शादी करना, अभी मत शादी करो। लेकिन हीरो जो था वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं साहब, शादी का फैसला किया है तो पहले तो शादी होगी, उसके बाद इलाज किया जाए। इस तरह से आंसुओं के बीच इस हीरोइन को खुशी मिली, शादी हो गई, लंदन गई भी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि ज़्यादा ये जिएगी नहीं, और जो भी पल हैं इसे खुश रखने की ज़रूरत है। और कुछ वैसा हुआ भी तो बाद में ज़रा बात बिगड़ी थी। पर सवाल ये है कि ये हीरोइन कौन और हीरो कौन, समझ तो गए हैं आप। हीरोइन मधुबाला और हीरो किशोर कुमार। ये बड़ी अनोखी कहानी, ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त दास्तानें तो ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अभी एक लड़की भीगी भागी सी है, मामला ज़रा रोमांटिक सा है, और इस रोमांस के नाम पर ही किशोरदा और मधुवाला जी को हम याद करते हैं। चलती का नाम गाड़ी से।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्प उत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूं, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो।

0: हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था। मैं नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके

जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां,

एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
1: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: भागो भागो जाओ अरे अरे अरे सिपाही आ गए अरे अरे बाहर जाओ जाओ आगे भागो चुप चुप जाओ
1: अरे मैंने कुछ नहीं किया
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिकंदर।

0: सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।
1: अरे

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो, वापस चलो सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
5: सबर करो साथियों।
3: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: दुष्टों को, भाग मेरे भाई, पकड़ो, पकड़ो ने।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो।
2: इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके।
3: महाराज चंद्रगुप्त आप?
2: हाँ
4: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
2: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
5: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
2: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
6: धन्य हो आचार्य,
7: धन्य हो,
8: धन्य हो,
9: धन्य हो।
2: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: अरे

0: सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
1: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छीए के कोई पण कार्य एकला हाथे सफल पार थतुं नथी, एटले के कोईनो साथ अथवा टेको होय ज छे। परंतु हमेशा एवी व्याख्या करी शकाय के आजूबाजू घणा बधा लोको होवा छतां पण एवा कया व्यक्तिने आपणे पसंद करवो जोईए के ए आपणी पासे हमेशा आपणो आधारस्तंभ बनी रहे अने आपणे आम छाती ठोकीने जयारे सफलता प्राप्त

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं होगा कितने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

हेलो नमस्कार, 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो पालनपुर पर आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। हूँ छू आरजे एआर अने लईने आवो छू डॉलर वहु नवलकथा। सुधामूर्ति लिखित अने सुधा मेहताए जेने गुजराती में अनुवादित करी छे ते नवलकथाना अंशों ने जीवन में वर्षो पहला लखायेली पोतानी केटलीक पारिवारिक अनुभूतिओ मित्रोनी वातो अने ए समयना एक सामाजिक कार्यकर्ता तरीकेना पोताना विचारोने निरूपण करती सुधामूर्तिनी आ नवलकथा आजे पण एटली ज तादृश्य छे। श्रोता मित्रों, आपणे गत एपिसोडमां वात करी हती कि श्यामने हवे अमदावादमां नवी नौकरी मळी गई छे अने ज्यां रहेतो हतो त्यांना सौने अने पोतानी पहेली प्रीतनी ए अनुभूति दर्शावती

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Ali Mukore.
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं होल किटले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।